आकाशवाणी इम्फाल हौजे पुंफोमसिदा पुदुना लाक्जरी रेडियो क्लास सनीगा मरिफुतरे सुब तांकगदा क्लास 8 की मणिपुरी नोंगिन लेसन नंबर 6 इचाउ मरकता थौरमसी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एज समग्र शिक्षा मणिपुर की तेंगबांगलोइनना पुथोक चोवनी

वाखल मथल की थौरों के संदोकतुने तहंजरी वसी आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल दगिनी हाउसिंग अमुक पुंफम से दा लांथुक चरी अतोप मंगाल थौरम दा पीपल एंड सोसाइटी इन एंसेंट इंडिया थौरम असी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूनिट एसीईआरटी की तेंगबांग लोयना पुथोक चवनी

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: खुदोलतम जरी माधवी फिल्म दगे सदना सरगम नसकवा एल्बम का सरमना सेरेंगवा सगोल सेम तिजेंद्रना सेरांग विषय

मखल मथल की थोड़ों के संदूक तूने तहन चरी वैसे आकाशवाणी एफ एम की एफ एम संगाई चैनल दगी नहीं हाउसी का मुकुम फोम सीधा पूछ रख ली मखल मथल की शैशक पर सिंह दगी गीत

गीत के हान बखुदोलदा ए आर रहमान जावेद अली के टी सगाथिया मदी पूजा मैम पुनः सकमीना वैश्यमा खुदोल तमजरी मैम पुनः तमिनरसी

0: 그라오이 맴 타복 온톡 간 수비라미
1: 아이고 아이고 아이고
0: 그라오이는 사비범 모라제 거의 건강래까 하시더네 온톡 밤비그라 아이고 온다 하나 삐우 아이고 온다 하나 삐우 지나부 가나다 하나 삐그다 보는 그라이 와칸다디 맴 밤비범 녹시비부시고 그라 포란다 빠이자겠고 할로 마니 마니 반토 올레 소음네 호에 마니 마니 이사막 토이바 호모 시부 잘라이자리바 होय होय ओ यानी अहन थंबगी कसु थुदुक पकाय बलेतीये होय होय ओ अद सोंगी संगाय सिबु होय ओ अद दि पंगलाप ला पसुना तबनिना ngai hak tang he koi thok piraklo aduga karino karino wali du hektana minerse hoy phani phani ai thamjage ko hoy hoy khura temba
1: a ibung ibung
0: ai je khura da कैनों तो हंगे ना खनबा कोई ये खुरा तुम पोक्षी बु साक्षादी दुबो हो जिकान जिकर चार बु खुरा
2: याम सारे याम सारे
3: मो याम चार
2: निमी खरी लेती ना
0: कोई खुरा
2: नंग चिंग वान बु वाक तुम बोली था
0: खुरा तुम नुंग है लेता पाउज ताब दा परे परे खुरा खुरा इजु करीन करीनो एक तक संभियो रो इजु सोमना कंदी खुरा मनी हार ले जी बनाकन से जित करीनो करीनो खित यिंग जरु की खुरा
2: परे परे इनाक तोंपो
3: आता देबो
2: आ नंगों दो वा मा हंगे से कुइरबनी आ हेलो रे पसिता हेता काव
3: ताले करियो बिर दो
2: आ नंग हो मसिता मतो करम लाखी बनो ने
3: अस ओ तो कोनी रे दादा देवता छाबगी
2: ओ देवता सु छाय
3: लसन नि पिसु आ लाइरे बक्ते फिल्म शूटिंग चखरे
2: ओ
3: मतुंग दि इन मसु गा मोग दु गुम तो
2: ओ
3: नाना उसे मा गि वखले खलक ब जू दे दे ताइना ब यू ब थौ दे बदि ने देवता छिक दे छाब इशा इमो सिंग ने गि तो सि दे ने थौ लु जे ल खा ग बदि दादा दादा अदु बोजि ति याम नुंगाय रे दादा खोइ मे अमल ते तिन बदेगी मफब से ले बदेगी यीशु थकत्रे साक्षु याम न चाहे हक साक्षु याम नुंगाय रे
2: फले फले
3: अदु तादे वो मतो करु मफम छिदा
2: ए हाय दोक पता सिल्ला सिन पन पता इकाय बे वानी ता
3: मखा ता बिलु दादा
2: ऐ सुने ईशान पाम कतंग याव जबनी
3: ओ
2: ऐ न माव कई दे सोके दे खन बदगी
3: ओ
2: बोडी ने हक थमुरे
3: ओ अदु दि तादे की चादुना चावकन बोडी ने थमबे हदना तादे मु मफम छिदा बोडिंग ने खलग तादी की सानो थंबो ओरे ने तारा
2: ता खोने नंगो महाक मही मसिंग मतिक सान हाइजरे
3: ओ
2: थाब अम सु तौजरे
3: ओ
2: अदु मामा मापा गि नुक्सि बदु मति आइने मगोन द तंबि हौद्र माले आइ गे अवा ब वारी से
3: ओ
2: अतो प कना गि मफम द सु लिरो रे खन खरबनि अदु बंग सिदि नहाक मुन तारो
3: खोइ तादा
2: इशा गि मोगना आईबो युम मधु दल हैं लगता बा आईबो शीघ्र पशु का आई दिहाई बा मखोई के वंगांग संगा

0: हेलो हेलो,
1: हेलो हेलो
0: गुड आफ्टरनून। हेलो कना वी बीर
1: सा
0: बनो
1: बनियो कौन बुला लंथेन
0: लंफेल देगी याब नुमाई
1: हो
0: जाएंगे से। गुड आफ्टरनून लेडीज द करम वाफम सिंह पुखट पनिंग में तक पियो
1: सा सुन तो दो बजे खाना कुछ ले वो कौन
0: होई।
1: दस फोन दे वाला फोन है बा चुमाई फोन तो नहीं बने अकुल ताई तो नहीं से को न्यू न पोलो पड़ा हवा ना इतने ठंड पड़ेगा कना भी आओ नहीं हो जाएगी
0: हुई हुई अचुम बने
1: सीलन पड़े बीओ सीलन पड़े को ला न्यू जो आते नहीं को ऐ जीवा रे ना दिन वाई रे ऐ ऐ दिन को
0: हुई
1: ना माधिनु आइने लाई आइने न्यू संता जने को और कल दिखा बगुन बच्चों तो हम निंदा भाई का
0: हुई हुई अवाह बताना अखिये ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯃꯄꯣꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯄꯣꯛꯇ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯈꯜꯂꯒꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯅ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯁꯨ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔꯒ ꯆꯠꯂꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯌꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯇꯥꯕꯤꯗꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯁꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯅꯥꯗ ꯌꯦꯛꯇꯅ ꯂꯩꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯁꯨ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ
1: ꯍꯣꯏ ꯁꯥꯔꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯀꯣ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯇꯧꯕꯅꯤꯗ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯏꯆꯥꯅ ꯑꯐꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯁꯂꯥꯝ ꯁꯣꯐꯤꯌꯥꯅ ꯁꯛꯄꯤꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯒꯨꯂꯥꯝ ꯃꯍꯃꯠ ꯁꯥꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯥꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯁꯤ
1: ꯍꯣꯏ ꯁꯥꯔ ꯏꯁꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ
0: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ

0: हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो ताबिब्रा। हुई ताफी उसे गुड आफ्टरनून लेडीज द ग्राम वाफम सिंह पुखत पी निंग बा। लाइमहल तराम नोक्सरी। गुड आफ्टरनून लेडीज द थेंगनाबा नुंगाइजे करम बा वाफम सिंह पुखत पी निंग बा ताफी।
1: ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯊꯥꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯆꯥ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯔꯤꯈꯥꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯞ-ꯇꯣꯞꯄꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯒꯣꯜ ꯃꯥꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯒꯤ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯈꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯅꯤ ꯔꯣꯜ ꯋꯥꯟ ꯇꯨ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯃꯄꯥ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯋꯥꯅ ꯁꯦꯝꯖꯔꯛꯄꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯕꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯦ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯌꯥꯝꯕꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀꯟꯅ ꯉꯥꯎꯁꯤꯟꯅꯗꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯣꯠꯅꯗꯅ ꯀꯟꯅ ꯃꯥꯡꯖꯤꯟ ꯊꯥꯅꯕ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯇꯧꯍꯟꯖꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯨꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯋꯥꯕꯁꯦ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯦ ꯀꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯣ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯛꯆꯦꯟ ꯈꯣꯏꯖꯟ ꯇꯤꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯦ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯥꯔ
0: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯖꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯥꯔꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯅꯤ ꯃꯃꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯡꯊꯥꯕꯒꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯔꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯏꯁꯩ ꯃꯇꯪ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯥꯏ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯏꯁꯩ ꯃꯇꯪ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯁꯟꯖꯦꯟꯕꯝ ꯕꯪꯀꯤꯝ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯀꯦꯅꯦꯗꯤꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯅꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ

धन्यवाद सनायाय। नमस्कार श्रोताओं, मैं खुराइजम बेबी रोशनी आप सभी श्रोताओं का गीतमाला कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आप सुन पा रहे हैं 103.5 मेगाहर्ज पर प्रसारित FM संगाई चैनल से। दोस्तों, आज शनिवार है और पहले की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम एक ही रूप। तो आप अनुमान लगाइए कि आज का एक ही रूप कार्यक्रम किस गायिका पर आधारित हो सकती है। तो सुनते हैं ये पहला गीत।

श्रोताओं, आपने सही अनुमान लगाया है। आज का एक ही रूप कार्यक्रम आधारित है गायिका लता मंगेशकर पर। अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से एक गीत, बोल शैलेंद्र के हैं और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने। आइए अब सुनते हैं सिलसिला फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में एक गीत। शब्द रचना जावेद अख्तर के हैं और सुरों से पिरोया है शिव हरि ने।

तीसरा गाना आपके लिए पेश है रुडाली फिल्म से एक गीत, आवाज़ दिया है लता मंगेशकर ने, शब्द रचना गुलजार के हैं और संगीतबद्ध किया है भूपेन हजारिका ने।

श्रोताओं, आपने अभी ट्यून किया है आकाशवाणी वाल्केंद्र के FM संगाई चैनल से कार्यक्रम एक ही रूप, जिसके अंतर्गत आप सुन पा रहे हैं लता मंगेशकर के गाने। आइए अब सुनते हैं चांदनी फिल्म से लता मंगेशकर और बबला मेहता के युगल स्वरों में एक गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी के हैं और संगीत से सजाया है हरिप्रसाद चौरासी ने।

आइए अब सुनते हैं एआर रहमान के संगीत निर्देशन में रंगदे बसंती फिल्म से एक गीत। आवाज दिया है लता मंगेशकर और एआर रहमान ने।

कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर पेश है प्यार किया तो डरना क्या, फिल्म से एक गीत। आवाज दिया है लता मंगेशकर और कुमार सानू ने, शब्द रचना समीर के हैं और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

श्रोताओं, आपको कैसा लगा हमारा आज का यह कार्यक्रम? मन तो नहीं करता आप सबसे विदा लेने का, लेकिन घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही है। बाद में 2:30 बजे आपसे फिर मिलेंगे फौजी भाइयों के दैनिक कार्यक्रम में, वो भी कंगला चैनल में। मैं आज आप सब लोगों के लिए कार्यक्रम फिल्म संगीत प्रस्तुत करूंगी, तो मेरा इंतज़ार कीजिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।

ट्रांजेक्टिव ऐसी लोनना मणिपुरी फिल्म इसे लाठोसब लोजरे अदमन तबीरबा साखस बनी इम्फाल की एफ एम संगाई चेनेल हौजिक मथंग वेस्टर्न म्यूजिक की दमक मीनारबा थौनाउजम खुशी नजरी।

0: मखल मथल की तोान तोान थोरमसिंग से आकाशवाणी इम्फाल के एफ एम संगाई चैनल ने हाउसिंग नौटल की पुंग अहम तारे मणिपुरी पाउ ताबीर से
1: आकाशवाणी इम्फाल मंगम मानथोन पाउ पाजरी मुख्यमंत्री युनाम खेमसान हाई शांति तंगदूताबाखपी माके संगसी समाज में शांति लेट्रबद खी चैथे फंगली से महरो खुनाई नोम की सूरग चरा ताब मई कंगलूप कुंठा तरुकलोम खुंदाब मनपुर से चौखटे चिंग तंपा अनीम थों मानना हिम खुदम चौखटमीन तंगाई फदे बिरसा लाइव्स इन न्यू भारत वीक की सरुक पांथोब जनजातीय गरिमा उत्सव तरुक यारदुना श्री खेमसान है मणिपुर चौखटप राइजम हेनबाद मिपुम खुदिंग लौबीनसी तंगदूताब फिवम वरी सान शांति लाने की माक पुनः संगसी है महरो खुनाई की सोता हो ट्राइबल महरो की सरकार ने याफ थौर की स्कीम क्या पाखली
2: स्कीम से भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना विकसित भारत 2047 इंडिया से इक्वालिटी लेब चप मानव थाक जाति खुदम पुखनब होनब ट्राइबल सोसाइटी की सोटा हुई छात्र सिंह की खलकान निखकी लोनला बिरसा है भारत की निखा तब की इहद शेड्यूल ट्राइब की कम्युनिटी चौब लौबी
1: राज्य की ट्राइबल अफेयर्स और हिल्स विभाग ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट होटल इम्फाल पांथोब उप मुख्यमंत्री नेमसा किपगेन वीडियो कन्फ्रेंसी कुथांग सरुक याखी सरुक मुख्यमंत्री पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप की शेड्यूल ट्राइब महरो बेनीफिशरी वरी सानाखी थौरम सकनायरब ट्राइबल अंसंग हीरो कायखुमनब उत्खी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पालन थौरम की सरुक डायरेक्टोरेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज राज्य थाक की सिंपोजियम कंपीटिशन कॉलेज लेवल डायरेक्टोरेट ऑफिस पांथोली चादमनब हिरमना की वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर है चादमनब तोान तोब सरकार एडेड कॉलेज की महरो सरुक यारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एसटीसी खुमन लंपाक इम्फाल इथिडेन डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर मणिपुर स्पोर्ट्स डेंटल सेंटर पुनः सिंधुना नोम की लाइंग की कैम से पांथोखे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एसटीसी इम्फाल की इंडोर हॉल पांथोब कैम तोान तोब मसा तरुक बॉक्सिंग जिमनास्टिक कराटे सेपाक ताक्रौ रेसलिंग वुसुकी अपुनब नुपा मचा मचा सानरो चामरोम लायेंखी सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन आईसी कैंपेन तमेंलों जिला मई पा पांथोखे कैंपेन स्मॉल टाउन कमिटी एसटीसी एडीसी तमेंलों वीमेन सोसाइटी न्यू सालेम पुनः सिंबनी अकोब की फिवम लू ना थम अमोर कई फट हौदी मफम चा हूंद खाब की पादम कैंपेन चथखीबी जिला रानी मार्केट मेडिकल गेट तमेंलों फाबगी मफम सिंह लंबी की मताय अमोर कई पैसब मफम सिंह कैंपेन की मनु चन सेंदी कैंपेन पुनः मई हूंद्रा मंगारोम सरुक याखी उपराष्ट्रपति सी पी राधा कृष्णन गोवा मूंफा राज्य हो।

0: खोजेल के दी यम फजर इतना
1: है माँ लाख पगाम तो ताज़ा होते ने सारी तो मिनल लागा आई तो यंग बिरम ले बो
0: लेकिन नूपान कुप्सन बिखरवा अतियासिदा थाज़ी की मंगल उबो पंद्रह शो थाबले ले नम शिदे
1: कराय दी थाबले ले नम ना
0: तामो कुछ वाई न तेदा न कोई पुकरी म पांडा हुबा थाबले की ले नम दुनी
1: है माँ ना होना नहीं निश्चिंत रहेगी बा
0: काव बंगम दबा
1: आई ना हल्ला मंतुं खरकांदा ठीक ना थाबले में खूंगे थोलो पदा तमो नंग ना साउंड रो लेना बदो
0: आई ये साउंड रो ठीक ना बोहना बदा नंग ना कया तो बाजकी
1: थाजे दबा मदी सिंह ने बकिया ना शिमलो पे ये मिट की पी नंग ना हल्ला ने ते थोक तो ना ऐंगों दे वाशकी को
0: अदो वाशा दोंगा सिदी नाक लेते ना
1: ऐस नंगे ने नाक तले दिने शिवा तो उरी सिदी
0: मनी ले मा
1: कया ये तमो
0: नंगे नहान मखई देगी दी नशीना कोई देगी है न पसे
1: ऑफिस देगी वाना हल्ला पमतम दा आई ने थी थी न ले रम लेडी कोई शाओ ने निकान जा दुना
0: ले मा
1: तमो तमो अदो अगु थी थी बसे हेंसा ओकरी ओहेंसी के
0: मपा की मसा उगी ओही है बदुनी आई न पुलिस ऑफिसर ओयर बनी ना आई की शासु शो इन पुलिस ऑफिसर ओहिंगनी
1: ไอ้นี่มาดิสุปันปามเดบตามะฮะนาพาวบะดะทะบักติดะกิริจายกะริกิไม่ยามนะนากะลัมบะดะมะนาวนะนากะลัมบะดะไอ้ไอ้ดิสุปันปามเดฮะเจริสิตามะมะนี่เลยมาไอ้ขุยอยู่เรมะนาหลักติบะเสสิตะเรนิปานเห็นจิหลักเลยจุเมกะไรดะนมะหักนะเลรงกะตะบะเลยมาไอ้ชุติเลยวิเจนดะเดียดิโอดะลาวบะยาบะดิลาวเรดะนาอะดุบะอะดุบะไกตะรอบะฮะหลักโลรคะนะหลักตระบะลาวโลรคะนะลาตระบะมิชะอะดุบะไอ้นมะพุมกะไรดะมุทีรุบะนะอะดุบะตามะ
0: ไอ้คุยเรียนบ่เสเมียมนะลาลงบ่กรุบอมะตะยาวคริดะงางเนยบ่เสซอยดะนุสุมะมะนิดาชิมะชิมะอะดุบะตามออิปังปังเจบอินาวะตุนาอินาวงงเนยูมิสเตเลเจบดอนาฮะนะปูมินะตะบะนาวมะนิเลยมาไอ้นะปูมินะตะบะอินาวนิไฮดะนานงบุตะพูบะเจบะตอกคิวนาเยงอคะระชิงชะนูพะซะนูคันดะนาวะระกวะเตมะคะกิวานิอะดุบุไอ้นะควายดีนุมชิบะดิ
1: ไอ้อีนาวเนี่ยตะมอมะซิมะนาวนูชินะวิกเปรมะดอปุนซิสุปะกิทาเดปิกะนุโกเลยมาไอ้ดะมะซิมะนาวนูชิซานะเนฮิมินะบะเซยัมปัมเจยตะมอมะนิเลยมากะยิโนกะชอนะกุตะมองจูชุกุรีตะมอลาตะมอกุตะมอเฮ้ยกิมันตะเซตะมอเลยมานะนะนะนะคาร์โบนะเนยามะบะฮาละมะยอเรมะตะเตเตมอตะเตเตมอตะมอชิมิตะมอ
2: नशी मी तारीख ओहनत्र मतम कुना हिमिन मैत मैत पांगल अनीना अपिप वखल थमोद कौंधना लखों सेंखीब नि कालें की तरानी थोनी पानब मीगी तारीख अहम निबी अदूमब मिहान ममा कया मचा कया सेट खाइनखीब मौगी सलबी कयाना मपुरेब कायनखीब लुखरा चनखीब पिखरीब अलान कयान ममा मपा की मथ्वा याव हजांग कौन कपचखीब ऐगुमलब कयान ऐगुमलब कयान सोना लेव लमदमसी खुंडाब काम करी कानरी बिहालान बिहालान फोल करी फंगलब बिहालान
0: खंगना
2: खुमदे खक्नी हौरुदे पाबदे 아두금 레버 미하라 나두기 아마앙 버싱아두 닝싱루라가 아두금 레버 미하라 아마묵 톡다나바 아이 거의 뿜면 막 이봐 뭐 각다기 마시아니 칸나 눈시시하는 힘민나버두니니 요렌
0: 좀미안바 미눈시 야우드라바 담티라바 담바람담기 미하라디로신케 아두부 실론 마판니 마이하우리 싱마이 통나 마이샤리
2: 미섬 프라자카나나 수팜데 아두금 레버 미하란
0: 미안바
2: 아두부 나가라 로고 아무디 꾸기라 로고 싱나 마샤 마샤기 말할 꼽신나 보나 보다
0: 좀미야마
2: 메릭 비데기 마이자오비 오키버니네 요레
0: 가나로 라우리 바게다 나갈레 가나로 탈레보 꾸기 홈레 가이 누난데 마치에타르 카야바 마니푸르 기다 못다디
2: 아두마이 인쿰잘 싱가 마샤 마가 마르 푸드라 따리따기 리싱가 마샤 트룩 양 카이니 토이 에디기 마탐 마이디뉴 카게 마하라즈기 사나 학탁타 이틸 럭히바니 무슬림 에코이슈마니 포다
0: 쭈미암바
2: 람담마스텔 레이리베스 노라닝올 카야가 샤우루 마로우나드르 힝민나르크바나 민가 우나키바니 무슬림 에코이부 마이타 이팡을라
0: 샤나르바슈 다라마 통안 통안 이쇼르디 아마타니 타노르시 토카이 타비와칸 불레시 에코이 하이엔기다마
2: 카이니기 레랑 랭시 말라말라 레이농시 코데이 콩다이 셰쩌르바슈 힝민나부기 누가이 마앙드링에기 마탐마도 कले इधा को कले इधा
3: योरेन बा
0: यां बा दरम जातोंगान की बना पीजे चक्का तोंगा ले बसु नशी यां बगी मांग दाई ने कंफर्म चेयर ले तो वासक चरी
2: योरेन बा
0: समाज शिबु अचुम बलंबी ने पुष्ट लग पना नना वही की अमत तंगारे भी थोक डांग वही जरिए कोई यां
2: योरेन बा खोदा नना हाँ कुमतम पुम नमक त थोक जान भी वो वही रसनु को
0: आई ने इथोक डांग जी पंग थोक चबदा Ia masai iteng pang biu ko.
2: Idi mihal anu magi sai teng na teng lebat. Nama sai naira bumi sakni.
0: Yamba.
2: Sai teng alik dugi sai nak ko na wayelle aibu. Pikli bi. Marai buk tiri bi sianu piriya ciagi. Mama ag kai naira bama pa. Oh. Piba masida. Piba masida ai nangi na teng karam na pang bangam gani yoren ba.
0: Yamba.
2: Lairam miagi su. Isha awa hau bu cinjak pijana ba. Pajaba pijet celen na ba. Mai masing batik sianu taman na bagi sakti. Adubu. Shakti puna makado tam tiraba minung siyaw do mihala na duna munbi kai pamdagi
0: ore mani yamba minung si kamdraba tam tira mihala la duna samaj ki dungi ore kada ba ajumba ba balame khure mak puna makle kha kara mangan khabani
2: tampak lam dana ai gum na soina ire ba kaya adu sing sing sang pareng sing dana mama ma pa kai na ba masha kaya kaya ni ne yoren
0: ba yamba yamba lanje na ba gilam jele duda thawai kane na ba gilam pham duda Kerana mama panu masa asing mabuk tanah pizza mengambil muda pak.
2: Yoren.
0: Namanoi masa asing do mabuk lambat terengang jeng naram gani.
2: Marai bab tinung si dan marai bab ning masa bami oi kaya na. Lauri bening kami kholau minum bagi kholau ni. Mi har pada haling balai traba lami masih gantan masa napati lalong sin mengambil traba lanjing purel ti soi dramai tiru kedam bisat ni.
0: Mani ya ba tam tiru bami har pada hai naram pak. Asyuma samangis sana bi sibu chumthona bagi dem atangai bu pai di ai koi mi kan man oi pham thok pani ni yamba
2: yoren ba sana mi won bading am de mi ni sa won bading am mi hat pa rai ba thabak oi basu mi kan badi aru ba thabak ni ne yoren ba
0: kalen gi ya la banu chagi mai sana yai bada laika chal la ba kallab labu ki laika gai singa de thin gai du na
2: yoren ba
0: sang ba phauna gi jagoi shan mangam ba angak pa lau mi bi thauna do ai ngor le tra basu Yaul magi mai hondi ai soi dra chumlam nagi ko ya
2: hauro ne yoen ba hauro
0: haur ge ai ge no ba kong ho thal ge ai no ge kong thang ai ge kong thang di mi hat panati
2: yoen ba
0: ai ge mapung oi pandam di dri ni bol shan ni ko ya ba
2: matam pum na mak ta khoda na na ku thok chan bi bata oi re shan ko yoen
0: ba ne mo ya ba jaat bi jaat mai tei muslim naga ku ki hai ba nai dana ire pa iram dam shle re ba marai ba thi re ba mama pa le jitra ba tol tar ba kaya sing dabu khom jin duna ओहिन गनी मखोय बाई खोंगलोय मखोय बमी अमम ओइन रे सेम लब तुंगदा लाहुन गनी अपुन बगी खोलाओ कया मा शेंगो हन गनी समाज का मोर पकया
2: ममान नउन हुंदो पिरम लबी पिक लबी मराय भक्ति रे बेगी ईशान पीरे जासे नशीदगी नगी नफम सिनरम लगे योरे
0: बा
2: अपुन बगी खोलाओ वदु लाओ बदा मा की खुजेल छु या हल्लो उने योरे बा
0: याम बन मफम कदाई दामु
2: आईदी मणिपुर की सिंह खोंग सिंह यालो जी लोया थुन चलु खिगनी सिंगुंग मनुंग खुदिंग मक तखंग लुखिगनी मिहाला नदुगी अमांगबा लाउरुगनी आई खोई पुनमक इमाम तगी मस्चाने हाय बदो
0: यांबा
2: फंगलग शागनी फंगदरग तोकनी आई इता वदु उरग मबुक चेल शाव मैते कयाना आई रु मखोय मांगोल थक तक कखतुना आईं बलाई जे सिंग पिथक लक्कनी
0: यांबा
2: निमित अदो मिकु पदो आई माय पाक पनी ने योरेन बा
0: यांबा
2: लाओ आई तुंगी लाओ लाओ नशिदगी 아이 삐끼비 말아이 먹 티르비 샤르 피리지 아세 난이나 펀드 신내름 내게는
0: 왜 누가이자리 양바 누가이자리 뿐에 뭐 토강로 아이 로그 저호르게 망카빌 수 양바
2: 라우 요렌바
3: 누가이라 누가이라 머리 뿐 누가이라 누가이라 마이 신 정나 비마 머리 뿐 누가이라 신 여러 번 버틴 난이나 마카들 내려오자 아이로 가나나 보 我 a 有 a 打 e w 心不 t 心的 a 给 a 啊 i 地 g 空的 n 也不 a 咩？爱不也不爱，爱我们都来得那些。哎呀，还英雄呢？什么人还没到了吧？到地板上就乱的扑着那个呢，几级多了个用土气的。还来得那些？没他们是爱有了不呢？还来得不些？肉我们不些还来得不？我啥有我们不得给？大妈，我是谁？伊妈那边不罗姆那么土哎？不把俺都铁路给偷了，还来你还得没个啥基本的就把还来得不些？哦。侬爱得过，伊妈曼尼普，侬爱得过，没心肠来，伊妈曼尼普，来改来改来改，马上啥？伊那么多曼尼普媳妇来嘛，侬爱的不咯？侬
4: 爱耶？
3: 我讲你，侬爱耶？哦，那爸蒙侬爱？哎，呸，没心肠来的不给，是的，你那亏那玩了我的一些，因我把布拉的那没的不安很安，啊，把布拉的那点 VIP 来的是安的，没得个不能冷饮呢。南边比南还不得罗金罗亚罗耶罗金罗亚的不蛮偏吗？可不得么？对那声音不冷，可不穿个地毛来这个谁来是冻的不冷？拍个 appointment 给还比这边的白疼不冷？哎是 IBS 给灭的，不是 TV 给多半打不冷？那哈罗呢？是派的 mission 国家，哈多个 ，Chief Minister 的 ex Gracia 比你老土不得？我下个好人被让以后念他不冷？一刚土的那钱都给没得，你那不好那里哎？侬跟那打了的呢，一下子就脱不了。一下子脱的呢，更多时间看到你眼没瞪大，我晒个一更多痕迹了，那不更也得更不了。一更更眼更眼把看白看的侬眼没看到。
1: 大毛，
3: 哎，好了不呢？
1: 哦，好嘞。大毛，你晒人的包的，晒得厉害。
3: 哎妈，能不打呼不咯？
1: 打呼的那不怕在海的那，他个里边你该弄。
3: 哎，该讲该讲的的，我这一帮的晒人多，怕是打不赢我的咯。
1: 哎。그럼막간비티찬다
3: 에이에코기네클럽이펑지신데다호직이분은티키브세링도 아마또와트라티가이도리
1: 는 아신외를담아
3: 아신외부리야신도로미들의사키니네
1: 아도담아
3: 에나
1: 에코이사부통그래봐
3: 왜뭔가시디우빨리이래해시행가보고있는혼나라지
1: 에가이노하시보
3: 신팡드레마히팡드레
1: 마히팡드레봐
3: 팡드레또팡가가뭐세세세세아실레이박자트로원리바바텐치원기드라
1: 하이마我才有新家一拉，都能把这新业来还带呢。
3: 哎，没都一新做，一分亏了呢，十五把天我老也不一新了的。哎，门第一新你拍到。
1: 一新不门第一新还办不出来了不？
3: 哦，怎么拍到？去得过一分一百没弄下？因为或者车卡摆不要的不门第些。
1: 嗯。
3: 妈的，一来生意没这么大，我也亏了不少，没来的呢。
1: 嗯。
3: 啊对不？我也亏了不少，比后头的不呢。
1: 嗯。
3: 妈的，业里一新一些。
1: 嗯。
3: 一口子那天我不十五把我们家得了不到。
1: 我业里一新多。Menteri di poket mana ibu tuh tu na yen benati ye. Kerajaan na miang kita mesti ye li bani.
3: Maikoh. Aduh di kerjigi no. Menteri ke aktif worker tu ke thonggal jepca na garis tu kah me. Aduh ke kerjigi sing ye li. Aduh tu sunatie ne. Syakung si khidra ba kunam parti makoi na kerjigi no. Jikadar syadra makoi na wajau cowok ngang kita kerjigi no.
1: Ya ya re tamu na ngamzar.
3: Ngamtab ne sumhari ngamtab.
1: Hore ne pani wala la kan de sing kerela hobai beduni.
3: Hey, biar ma. Ibu ne.이몽시내다가래시이몽디밥다이낭디다람바로바니월아각든낫디짝월암수다가래
1: 하이마짝월아나가이노다모
3: 이신년바마양무사신이노야코이나바니월아이나가오래드나짝통과부자리나나코이짝월아가오따라
1: 다모디게돌아봐
3: 이샤리비마디게돌아봐
1: 코이코이디싹시통부다쿠세주제라바도
3: 오아코이쿠추제라바도
1: 아두에라가나호텔라마간틱돌아가사바따리다나
3: 그리호텔간틱돌아가사세바아두에따디싹통큰머리부싹챙채아가오고로토시
1: 온토쩡나
3: 온토게
1: 온토우
3: 간나디에아코이나네놈기네사리테이바레마바마얌세공반다히도키버시온토르바무갑자니에이구이럼자니이봉나네옥아니훔들로이게네칸칼레이세구이럼자니바레아이코이싹챙채오고로토시고
1: 온토우
3: 온토게
1: 온토우
3: 온토게
1: 마남디농시레니
3: 간나디에나시시남케락바요테칸틱로보마얌사도시시라디똥아이르니다这铺一样的给你呢，咖啡色的泡车，老远的街机我那个用拖开了个，没路的给跑了个前方走了呢，屋长来拖个。
1: 好呢，还用我爱跑吧，那么拉跑的呢，弄屋多，多么老哟。
3: 老多哩呢，
1: 엄마 원어비도 옷꼬는데 싹통을로
4: 오 달까레이테 마두들 라나이 토킹니 강아봐
1: 윤빠네디 강자가 싹통부스 딸리말레네
3: 아이 아이 뭐 시행항식이 폭폭 싹퀴즈 아이 아이 어떻게 성능도로 이대 거야 간다대 아이 아이 그 시 호텔에 싹싹샤비나타 아두 이봐 따르디 레이브 쇼크 호텔에 든 레이드시고
1: 아우 레이드세
3: 파레파레파레 뭐시 안품명시 또 개꼼세 간다대 아두디네 미리 또 이뭉셰 라일리는 남니 아이 좀치 도가이버 그고 도가이고 뭐 진짜
1: 나 콰이베네 따로 나 콰이베네
3: 그러기노 능 능능 나 콰이르미네 능능 싹 통을 게라 두디야
1: 달래
3: 달래 어디도 또 안 바리 돼 호게네
1: 민철이 짱 나 콰이베들게 얀다 콰이베네
3: 얀다
1: 응 얀다 콰이바
3: 이슬리비에메나 얀다 콰 나이베네 나붕 아이 또 와리다 콰이
1: 아스 담오세 사이 군 참마가 헬라바 니 푸수 들어베네 Tamogi maru pengi zengi masado class set tam khabane
3: ngai ko ngai ko ngai ko aina sehi kun thamri manga ni phu yorok to baga imana ba bijen ki masana class set tam ga kari gnu ngwa biri
1: ko hanu dringai da ne na mama pusalo ai ba
3: o si har kane se na khanga bani ne aina de shon ne khudong sa bang ngari ni tan sa bang ngari ni lawa he kale se mar ka kan bi ponte ba se
1: tamo
3: aina
1: aina ang sa thong di do tanduna ga thong ga banate
3: kari gnu thong di sa
1: ina ma porak na ba strike toiba
3: isalibe mena shom de strike toring eta na nabung edi sha che che che che che aina ai ai aina ai ai ai cha khum nam nam ni ko
1: oi strike na ga kanada di ai gi dabi se phang na ba sara hen de khong jang hekta sang sing edon
3: o manipur ban kauro
1: e
3: iram da manipur se adu dom ke suban ada dom ke suban hodu sing na be suban hui ma sang de be suban hairi ba ban mayam do ki manung da na nang su sumai toro ai khoi gi ibung se ina mama purak tre na na ban ma sang tang thoi li chal horo
5: Hey, yungu, matam sa ayo ra po ni thenga po ni. Ay na, ngasay ki ising tatado halam mani. Ato pa ising tatamo lakwa ngayro kige.
4: Sak to, ibong lalo, yara mam ni. Thira ka tang di sabi hao ro.
5: Ito, sak ay di kigala ni. Ay, ay, ay, ay, ay, ay,
1: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ai di chai de naba hona da ya de nu shi ba haba chi chu anga pani ko ore lengam de o de hengam de ibu mi pani shi be de gi lam lan ma ha ne hene nu shi de thawai mak ni khale e
5: mo da mu ngai ne lerem da
1: e ka dom de no ta ta za da na
5: ya ko ne sa kang du bu nu pa du bu ka na no
1: kang na kang na kang sin na dra ba di pa pu je ni
5: ho ji kang gi ne ma sak pha sa ba le sa bi sing se स्टेम्बाय मामलै हाइने
1: थाजागा दबदुगि महत्ता नुपा थोकपदुने आइनो हिङिबा
5: नमसुङम लोइदबदने थौना फबि साबदो नुसिबिगि जनबिने इसखानि
1: मसिदि सेंबाङांनासे
5: करिया सेंमनो
1: आइबुनो युमदा करन कानपबि दैनो
5: अखु युमदा

0: खदल गनी सुगदा तमिनसी मुखेस्तगी गीदमा।
1: कभी-कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका, मगर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

आप सुन रहे हैं हर सिंगार और मैं हूं नूपुर. आज की रात आपके साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. आज की रात बात उस एहसास की जब कोई बिना दस्तक दिए चुपके से दिल में उतर जाता है, जब किसी की मुस्कान, किसी की नजर और किसी की बातें धीरे धीरे हमारी धड़कनों का हिस्सा बन जाती हैं. चांदनी रात में दिल ने एक दुआ मांगी थी, तेरी हंसी में अपनी दुनिया मांगी थी. न जाने कब हो गया असर मोहब्बत का, बस तेरी बातों में हमने तो जीने की वजह मांगी थी. 1973 की एक सदाबहार धुन, फिल्म यादों की बारात का वो गीत जिसने मोहब्बत को एक नई आवाज दी. अपनी आवाज के जादू से इसे सजाया मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने, और इस गीत में सुरों का जादू जो खोला वो खोला आर डी बर्मन जी ने. अगर इस वक्त कोई आपके ख्यालों में है कोई ऐसा जिसका नाम आते ही होठों पर मुस्कान आ जाती है, तो एक गीत शायद उन्हीं के लिए है. तो आइए सुनते हैं वो नगमा जिसे जब भी सुनो उतना ही प्यारा लगता है, उतना ही अपना लगता है जब पहली बार सुनने पर लगा था.

कुछ गीत सच में वक्त से परे होते हैं, है ना? हर बार सुनो तो लगता है जैसे प्यार फिर से पहली बार हो गया हो। कुछ गीत यूं ही दिलों में उतर जाते हैं, कुछ लोग यादों में हमेशा ठहर जाते हैं, और कुछ रातें बस एक गीत के सहारे जिंदगी को थोड़ा और खूबसूरत बना जाती हैं। होता है ना कि कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आ जाते हैं कि सब कुछ तो वही रहता है, वही रास्ते, वही मौसम, वही शाम, वही रात, वही दिन, लेकिन फिर भी सब कुछ बदल सा जाता है। हर बात के, हर चीज के मायने बदल जाते हैं। जब किसी का होना सिर्फ साथ होना नहीं बल्कि सुकून बन जाता है, किसी का आना सिर्फ मुलाकात नहीं रहता बल्कि जिंदगी भर के साथ का इरादा बन जाता है, वादा बन जाता है, तो इसी बात पर एक बहुत प्यारा सा गीत हमारा साथ देने चला आता है। 1975 फिल्म आंधी, इस फिल्म का एक बेहद रोमानी गीत जिसे अपनी दिलकश आवाजों से सजाया किशोरदा और लता जी ने, और जिसके शुरू में मोहब्बत की रूह बसाई आर डी बर्मन साहब ने। ये गीत सिर्फ प्यार की बात नहीं करता, ये उस एहसास की बात करता है जब किसी का साथ अंधेरों में रोशनी बन जाता है। तो आइए इस रात को थोड़ा और हसीन बनाते हैं और सुनते हैं वो गीत जो जब भी सुनो दिल की धड़कनों के साथ धड़कने लगता है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री।

तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

बिल्कुल आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रोग्राम है हर सिंगार साथ हूं मैं नूपुर और प्यारे प्यारे रोमांटिक ड्यूएट्स हमारे साथ हैं आज की रात कुछ रातें ऐसी होती है ना साथियों जब नींद आंखों से रूठ जाती है दिल किसी की यादों में कुछ खोया खोया कुछ उलझा उलझा सा रहता है और हम बस करवटें बदलते रहते हैं कभी कोई हंसी याद आ जाती है कभी कोई अधूरी बात कभी किसी का साथ अगला गीत उस मोहब्बत के नाम जिसमें इंतजार भी है बेचैनी भी और किसी अपने की कमी का मीठा सा दर्द भी वो एहसास जब कोई पास ना होकर भी हर पल साथ महसूस होता है फिल्म आपकी कसम का दिल को छू लेने वाला गीत जिसे अपनी आवाजों से अमर बनाया किशोरदा और लता जी ने ये गीत सिर्फ एक धुन नहीं कह सकते हैं कि उन तमाम रातों का एहसास है जब मोहब्बत नींद से ज्यादा गहरी लगती है रात भर चांद से तेरी बातें करते रहे तेरी यादों में खुद को हम खोते रहे नींद आई भी तो तेरे ख्वाब ले आई हम यूं ही तन्हा करवटें बदलते रहे

वाकई कुछ गीत ना जैसे दिल पर हल्की सी बारिश बनकर गिरते हैं। सुनो तो लगता है मोहब्बत अभी भी दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। मोहब्बत कभी फासलों में भी मिलती है और कभी पास रहकर भी दूरियां छोड़ जाती है, लेकिन जब दो दिल सच में एक दूसरे के हो जाएं तो वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं और फिर वही दूरियां नजदीकियों में बदल जाती हैं। 1967 की फिल्म आमने सामने का एक बेहद रूमानी गीत जिसे अपनी दिलकश आवाजों से सजाया मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने, और संगीत में मोहब्बत की नरमी घोली कल्याण जी आनंद जी ने। एक ऐसा गीत जो ये एहसास दिलाता है कि प्यार में दूरी भी कभी कभी मोहब्बत को और गहरा बना देती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया।

राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपके इन खूबसूरत पलों में आपका स्वागत है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत में मैं उन पूरे सफर में आपके साथ जहां बातें थोड़ी धीमी होती हैं कम भले ही होती हैं लेकिन एहसास जो हैं वो बहुत गहरे होते हैं रात धीरे धीरे अपनी चांदनी बिखेर रही है हवा में एक मीठी सी सरगोशी है मानो कुछ कहना चाहती हो और दिल में है बहुत सी अनकही बातें तो आज की इस मुलायम थोड़ी सी ख्वाबों भरी रात में चलिए सुनते हैं कुछ ऐसे नगमे जिनमें प्यार की नरमी है यादों की गर्माहट है और दिल के धड़कने की आवाज पहुंच रहा है आप तक अब्दुल्ला फिल्म से ये गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज में

गीत मेरे मन मीत आप सुन रहे हैं एफएम कूल्ट पर. आजकल की रातें जो है ना अजीब सी हो गई हैं. पहले लोग चांद दिखा करते थे, अब क्या देखते हैं, लास्ट सीन. कभी किसी का ऑनलाइन दिख जाना दिल को सुकून देता है, तो कभी टाइपिंग का वो छोटा सा शब्द दिल की धड़कनें बढ़ा देता है. फिर मैसेज आए ना आए, बात हो ना हो, लेकिन ये एहसास कि शायद वो भी जाग रहा है या जाग रही है, रात को थोड़ा कम तन्हा बना देते हैं. क्या यही प्यार है?

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और

सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग. ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते. आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे सुबह अगरतला के मुक्तधारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वाइस एडमिरल संजय वत्स्यान ने भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। ये पद भारतीय नौसेना के सबसे महत्वपूर्ण परिचालन पदों में से एक माना जाता है। इससे पहले वे नई दिल्ली में नौसेना मुख्यालय में उप नौसेना प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। निर्वाचन आयोग के कानूनी परामर्शदाताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और सही मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला होती है। उन्होंने बूथ स्तर के अधिकारियों और बूथ स्तर के एजेंटों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वे मतदाता सूची को सही और अद्यतन रखने में अहम योगदान देते हैं। नागालैंड में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए दीमापुर सरकारी कॉलेज में कल 3 नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा के तहत शुरू की गई हैं। अगरतला की विशेष सीबीआई अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रगतिशील

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. समय हुआ है 12:11 और 8 सेकंड और ये समय है कार्यक्रम पानी पर लिखी कहानी का, जिसमें आज आप कहानी सुनेंगे मेरी मंजिल तुम नहीं. स्वर और आलेख हैं कुसुमलता के, परिकल्पना निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेती. तो चलिए आइए सुनते हैं कहानी मेरी मंजिल तुम नहीं.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर पानी पर लिखी कहानी आज के दिन आप इस कार्यक्रम में सुनते हैं एक कहानी जिसमें घुले होते हैं सात सुरों के रंग मैं कुसुम लेकर आई हूं आज की कहानी मेरी मंजिल

ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो दुबला पतला साधारण शक्लो सूरत का गरीब माँ बाप की इकलौती संतान था। अपने लाडले बेटे से ढेरों उम्मीदें बांधे हुए उसके माता पिता को इंतजार था तो उस दिन का जब दीपक पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और उनके दिन फिरेंगे। बड़े प्यार से उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े का नाम रखा था दीपक। हमने अक्सर देखा है कि अगर परमात्मा कहीं पर किसी को कुछ कम देता है तो दूसरी जगह उसे बढ़ा कर दे देता है। जी हाँ, दीपक पढ़ने में बेहद होशियार था, हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट। बावजूद इसके जवानी के दहलीज पर कदम रखते ही दीपक का ध्यान बार बार अपने साधारण व्यक्तित्व की ओर जाने लगा था, खासतौर पर आजकल जब से उसने सीमा को देखा था। सीमा का परिवार हाल ही में उसके पड़ोस में शिफ्ट हुआ था। सीमा बला की खूबसूरत थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कि ईश्वर ने बड़ी फुर्सत से उसे तराशा था। दीपक ने जब सीमा को देखा

0: दीपक मन ही मन सीमा को चाहने लगा, लेकिन कभी सामने आकर उसे कहने की हिम्मत ना हुई। उसे डर था कहीं सीमा उसके प्यार को ठुकरा ना दे। कहां परियों से दिखने वाली सीमा और कहां साधारण सी शक्लो सूरत का दीपक। मगर चाहत ये सब सोचकर तो नहीं होती ना। सीमा के लिए दीपक की दीवानगी बढ़ती जा रही थी, मगर उसे सीमा के करीब जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसे संयोग कहिए या कुछ और, एक दिन सीमा की माँ दीपक की माँ से मिलने आई थी और दीपक चुपके से उन दोनों के बीच हो रही बातों को गौर से सुनने लगा। सीमा की माँ कह रही थी, क्या करूं बहन, मेरी बेटी इस बार भी फेल हो गई। उसके लिए रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन बस पढ़ाई की वजह से बात बनते बनते बिगड़ जाती है। ये तो बड़े दुख की बात है बहन, लेकिन मैं भला इसमें क्या कर सकती हूँ, दीपक की माँ ने कहा। सुना है आपका बेटा पढ़ने में बहुत तेज है, अगर वो मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ा दे तो शायद वो पास हो जाए और उसकी जिंदगी संवर जाए। बड़ी दुआएं लगेंगी आपको। ये सुनते ही दीपक का दिल बल्लियों उछलने लगा। उसे तो मानो मन की मुराद मिल गई थी। उसने सुना कि उसकी माँ कह रही थी, माफ करना बहन, दीपक को तो अपनी ही पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती, फिर भी एक बार आप उसी से ही पूछ लो। दीपक की तो खुशी का ठिकाना ना था, फिर भी सीमा की माँ के कहने पर उसने अपनी खुशी को दबाते हुए अनमने अंदाज में कहा, ठीक है आंटी, आप कहती हैं तो मैं किसी तरह टाइम निकाल लूंगा। दीपक मन ही मन सीमा के प्यार के ख्वाब बुनने लगा था।
1: मगर लगता है कुछ ऐसा मिल गया

0: दूसरे ही दिन से दीपक सीमा को ट्यूशन पढ़ाने उसके घर जाने लगा। सीमा भी मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। जब वो पढ़ती तो दीपक उसे देखता रहता और जब सीमा से उसकी नजरें मिलती तो वो झेप जाता। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से खुलने लगे, बातें करने लगे। और फिर एक दिन दीपक ने सीमा से कहा, सीमा एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? मुझे पता है, सीमा मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? दीपक ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। अरे बुद्धू, फीलिंग्स को ज्यादा देर तक छिपाया जा सकता है कहीं? ये तो एक खुशबू की तरह होती है, बिना कहे ही आंखों से, चेहरे से, रोम रोम से बयां हो जाती है। अच्छा, इतना कुछ जानती हो फीलिंग्स के बारे में, तो अपना जवाब भी बता दो, खुद ही समझ लो। ये कहती हुई सीमा एक अदा के साथ वहाँ से चली गई। सीमा की दोस्ती का आसरा पाकर दीपक के सपनों को मानो पंख लग गए और वो सातवें आसमान पर उड़ने लगा।
1: एक नाम

अपने सपनों के हवा महल में दीपक पढ़ना लिखना भूलता गया। उसे तो अब रात दिन सीमा के सिवा जैसे कुछ सोचता ही ना था। जैसे तैसे दिन गुजरता और शाम ढले वो सीमा के घर पहुंच जाता। एक दिन रास्ते में उसका एक पुराना दोस्त राहुल उसे मिला और बोला, क्या बात है दीपक, आजकल तुम कॉलेज नहीं आ रहे हो। मैं जानता हूं तुम्हारे और सीमा के बारे में। देखो, सीमा वैसी नहीं है जैसा तुम उसे समझते हो। अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, एग्जाम सिर पर है, अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। दीपक को राहुल की बात बेहद नागवार गुजरी। उसे लगा राहुल उससे जलता है। वो तीखे अंदाज में बोला, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं तुम्हें इससे क्या, कहीं सीमा के साथ देखकर तुम्हें मुझसे जलन तो नहीं हो रही। अपनी सीख अपने पास रखो, समझे। राहुल को लगा कि अभी दीपक को समझाना ठीक नहीं, वो सीमा के प्यार में अंधा और बहरा हो चुका है, अभी उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा।

चाहत भरे दिन पंख लगाकर उड़ने लगे। आखिर वो दिन भी आ गया जब सीमा का रिजल्ट आने वाला था। दीपक आज बेहद खुश नजर आ रहा था। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान ना देकर जी जान से सीमा को पढ़ाया था। उसे पूरा विश्वास था कि सीमा जरूर पास हो जाएगी। और फिर उसने सोचा था कि सीमा के पास होते ही वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा। जैसे ही दीपक को पता चला कि सीमा पास हो गई है, वो खुशी से झूम उठा, भागा भागा सीमा के घर पहुंचा। उंगलियां डोरबेल की बटन से हट ही नहीं रही थी। अचानक दरवाजा खुला, सामने सीमा खड़ी थी। चेहरे पर झुंझलाहट के भाव साफ जाहिर हो रहे थे। बेरुखी सी बोली, क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है? दीपक अपनी ही धुन में बोला, सीमा तुम्हें पता है तुम पास हो गई हो? हाँ मुझे पता है। तो सीमा उसी बेरुखी से बोली, तुम खुश तो हो ना? दीपक ने पूछा। हाँ बहुत खुश हूं, आखिर इतनी मेहनत जो की है, लेकिन तुम इतने खुश क्यों हो रही हो? सीमा के लफ्जों में बेरुखी जारी रही, लेकिन सीमा के मोहब्बत में पागल दीपक का ध्यान सीमा के बेरुखी की तरफ नहीं जा रहा था। वो उसी प्यार भरे अंदाज में बोला, सीमा मैं आज तुमसे कुछ कहने आया हूं। तो कहो, अंदर नहीं बुलाओगी सीमा? नहीं अभी टाइम नहीं है, जो कहना है यही कह दो। सीमा आई लव यू, दीपक उसी उतावलेपन में बोला था। प्यार? और तुमसे? सीमा आश्चर्यचकित होते हुए बोली, तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करूंगी? आईने में देखी है शक्ल अपनी? तुम्हारे पास है ही क्या मुझे देने के लिए? सीमा, दीपक तड़प कर बोला, मानो किसी ने उसकी दुखती रग पर उंगली रख दी हो। वो धीरे से बोला, तुम मेरी दोस्त हो ना, और दोस्ती ही तो प्यार होता है। दीपक ने अपने जज्बात का हवाला दिया, प्यार तुम मुझसे करते हो मिस्टर दीपक, मैं नहीं। मैंने तो सिर्फ पढ़ने के लिए तुमसे दोस्ती का नाटक किया था, माफ करना। प्यार मैं राज से करती हूँ। जी हाँ, राज जो कि इंग्लैंड में रहता है और शादी भी

उसी से करूंगी। राज आज अपने पेरेंट्स के साथ घर आ रहा है। उसके मम्मी पापा की शर्त थी कि जब तक मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक उसके साथ मेरी शादी नहीं हो सकती, और आज वो दिन आ गया है। एनीवे, तुम जल्दी से यहां से चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि वो लोग तुम्हें यहां देखें और कुछ सोचें, सीमा बोलती जा रही थी। और उसके कहे एक एक शब्द दीपक के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। चंद पलों बाद दरवाजा बंद हो चुका था और दीपक के तो जैसे सपनों की दुनिया ही लुट चुकी थी। उसके रंग बिरंगे ख्वाब मटे।

रास्ते में एक जगह भीड़ लगी हुई थी। शायद किसी बाइक सवार लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। राहुल अपनी बहन आरती के साथ वहां से गुजर रहा था। भीड़ देखी तो रुक गया। अरे ये तो दीपक है, मेरा दोस्त। शुक्र है ज्यादा चोट नहीं आई, किसी ने कहा। राहुल अपनी बहन आरती की मदद से दीपक को घर ले आया। पूरी तरह होश में आते ही दीपक रोने लगा। मर जाने दो मुझे, जीकर क्या करूंगा, किसी लायक नहीं हूं मैं, राहुल उसे दिलासा देने लगा। ऐसी नासमझो वाली बातें नहीं करती दीपक, तुम्हें पता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे माता पिता पर क्या गुजरेगी, कभी सोचा है तुमने? वो तो जीते जी मर जाएंगे, क्या इसी दिन के लिए उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है? पूरी जिंदगी तो उन्होंने तुम्हें पाला पोसा, और एक अजनबी लड़की आई और तुमने अपनी जिंदगी और मौत उसके हाथ में दे दी। ये भी नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप का क्या होगा जो मुझे देखकर जी रहे हैं। मैं अब किसी के लायक नहीं हूं राहुल, दीपक रोते हुए बोला। तुम बहुत लायक हो दीपक, तुम्हें पता नहीं अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा है, संभालो खुद को, तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना है, जिंदगी अनमोल है।

किसी ऐसे इंसान के लिए गवाना समझदारी नहीं जिसके लिए तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। उठो और खुद को साबित करो। दीपक समझ चुका था, एक दृढ़ संकल्प के साथ उठा। वो जान चुका था कि उसे अब क्या करना है।

धीरे धीरे दिन हफ्तों में हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलते गए और इस तरह कई बरस गुजर गए दीपक अपनी मेहनत और लगन की बदौलत एक मशहूर डॉक्टर बन चुका था दौलत और शोहरत उसके कदमों में थी एक रात अचानक उसके फोन की घंटी बजी किसी महिला का फोन था हेलो हेलो डॉक्टर साहब जल्दी से आ जाइए प्लीज वरना ये मर जाएगी कौन और आप कहां से बोल रही हैं वहां पहुंचा तो देखा कि एक टूटा फूटा जर्जर सा मकान था एक बुजुर्ग महिला थी जिन्होंने डॉक्टर दीपक को फोन किया था मरीज को देखते ही दीपक मानो उछल पड़ा अरे सीमा तुम और इस हाल में सब बताऊंगी दीपक लेकिन पहले ठीक तो हो जाने दो सीमा ने आहिस्ता से कहा धीरे धीरे दीपक के इलाज से सीमा ठीक होने लगी

दिन फुर्सत के पलों में सीमा ने दीपक से कहा, दीपक मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकरा कर तुम्हें बहुत दर्द दिया था ना, मुझे मेरी गलती का सिला मिल गया। राज मुझे छोड़कर चला गया, उसने मुझे धोखा दिया। शादी के बाद मुझे पता चला कि इंग्लैंड में उसने एक और शादी कर रखी थी, उसके एक बेटा भी है। फिर अचानक कुछ सोचते हुए सीमा बोले, खैर तुम बताओ कैसे हो, तुम्हारे बीवी बच्चे कैसे हैं? दीपक जो अब तक चुपचाप सीमा की बातें सुन रहा था धीरे से बोला, मैंने शादी नहीं की सीमा। ये सुनकर सीमा की आंखों में एक चमक उभर आई, वो बोली, मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, है ना, इसीलिए तो शादी नहीं की, सीमा भावावेश में कहती चली गई। दीपक हम क्यों ना गुजरी हुई बातों को भूल कर एक हो जाएं? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ दीपक। दीपक चुप रहा, वो कुछ सोच रहा था।

कुछ पल खामोश रहने के बाद डॉक्टर दीपक ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोला, अब बहुत देर हो चुकी है सीमा, आरती मेरा इंतजार कर रही है। कौन आरती? वही तुम्हारे दोस्त राहुल की अपाहिज बहन, सीमा ने कटाक्ष करते हुए कहा। उसे अपाहिज मत कहो सीमा, वो बहुत अच्छी और बहुत नेक लड़की है, तुम्हें क्या पता कि वो कितने काबिल है। हाँ, लेकिन तुम तो रूप और दौलत को ही सब कुछ समझती हो ना। खैर, मुझे यकीन है कि मैं आरती के साथ बहुत खुश रहूंगा। दर्द ही सही, लेकिन तुम्हारी ही वजह से मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सीमा। और हाँ, एक हफ्ते बाद मेरी आरती के साथ मंगनी है, तुम जरूर आना। ये कहकर दीपक वापस अपने घर की ओर मुड़ चला। सुनो दीपक, लेकिन प्यार तो तुम मुझसे, सीमा ने पीछे से आवाज देकर कुछ कहना चाहा। दीपक के कदम कुछ पल ठिठके, वो बिना पीछे मुड़े ही बोला, सीमा मेरी मंजिल तुम नहीं।

तो ये थी कहानी मेरी मंजिल तुम नहीं। कहानी की परिकल्पना, निर्देशन और प्रस्तुति है रश्मि कुकरेती की। तो अब मुझे यानी कुसुम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे पानी पे लिखी कहानी, जिसमें शीर्षक था मेरी मंजिल तुम नहीं। दोस्तों, कुछ कार्यक्रमों के रूपरेखा आपको बता देते हैं, क्योंकि अभी होंगे कुछ ही समय में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और 1:10 पर कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। उसके बाद 2:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रात सुरमई, और फिर 3:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमराही, और आपके साथ रहेंगी रूपा धवन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे सुबह अगरतला के मुक्तधारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नागालैंड में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए दीमापुर सरकारी कॉलेज में कल 3 नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा के तहत शुरू की गई हैं। निर्वाचन आयोग ने कानूनी परामर्शदाताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और सही मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला होती है। उन्होंने बूथ स्तर के अधिकारियों और बूथ स्तर के एजेंटों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वे मतदाता सूची को सही और अद्यतन रखने में अहम योगदान देते हैं। अगरतला की विशेष सीबीआई अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रगतिशील इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को 6 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों को आपराधिक साजिश रचने, लोगों से धोखाधड़ी करने और त्रिपुरा जमाकर्ता हित संरक्षण कानून का उल्लंघन करने का दोषी पाया। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये महामुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं

आज गगन में पूनम की रात है और साथ में तारों की बारात भी है, क्योंकि मिलन होगा चांद और चांदनी का, ऐसे में दोनों की मुलाकात है। दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आज अंजू आपके साथ, लेकर आई हूं कार्यक्रम गीत सुहाने, और रहिए इस घंटे मेरे साथ, सुनेंगे बहुत ही सदाबहार गीत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

अच्छा सुनो, जहां हमें कोई नाम से ना पुकारे, जहां कोई हाल ना पूछे, जहां कोई हमें नाम से ना पुकारे और जहां कोई हाल ना पूछे, चलो उस अजनबी शहर की तरफ कदम बढ़ाते हैं।

लोग पूछते हैं हमसे हमारी दीवानगी की हद, लोग पूछते हैं हमसे हमारी दीवानगी की हद, हम मुस्कुरा कर कहते हैं कि उनसे पूछो जिन्होंने मोहब्बत नहीं की।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

समय हुआ है 1:30 और 2 सेकंड। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने और मैं हूं आपके साथ अंजू।

उसने पूछा कि बताओ मोहब्बत क्या है, उसने पूछा कि बताओ मोहब्बत क्या है, मैंने कहा कि किसी की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढ लेना और खुद को खोकर किसी और के वजूद में खो जाना, यही प्यार है।

एक सुकून सा मिलने लगा है तेरी बातों में, जैसे कोई खोया हुआ तारा मिल गया हो रातों में। एक सुकून सा मिलने लगा है तेरी बातों में, जैसे कोई खोया हुआ तारा मिल गया हो रातों में। बस यूं ही बातें करते करते हम दिल हार बैठे हैं, सच कहें तो अब हमें तुमसे प्यार हो गया है यही मान बैठे हैं।

चेहरे पढ़ लेने का हुनर सीख लिया है हमने। लोगों के दिलों की हर बात हम यूं ही पढ़ लेते हैं। आंखों को क्यों छुपाए फिरते हो तुम हरदम, बिन देखे ही तेरी हर बात को हम यूं ही समझ लेते हैं।

दूसरे कारण का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर फिर से मिलूंगी, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे सुबह अगरतला के मुक्तधारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। म्यांमा के उपराष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट प्रणाली के शुभारंभ का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणाली कोहरे के दौरान उड़ान संचालन में सुधार कर सकती है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ये तकनीक देश भर के अधिक हवाई अड्डों तक विस्तारित होगी, इससे सुरक्षा मजबूत और यात्रियों के यात्रा अनुभव में वृद्धि होगी। नागालैंड में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए दीमापुर सरकारी कॉलेज में कल तीन नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा के तहत शुरू की गई हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये महामुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने की भी संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। In Karnataka, the Congress Legislature Party meeting in Vidhan Sauda has elected D.K. Shivakumar as its new leader after the resignation of Siddaramaiah. His name was proposed by outgoing Chief Minister.

समय हो गया है 2:11 और 4 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का, जिसमें आप सुनते हैं बहुत ही मधुर गीत। और मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू। बहुत ही सुहाने गीत, बहुत ही प्यारे गीत रहेंगे इस कार्यक्रम में, और आप भी कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

लोग पूछते हैं मुझसे मेरी दीवानगी की वजह, लोग पूछते हैं मुझसे मेरी दीवानगी की वजह, मैं तो बस मुस्कुराकर तुम्हारा ही नाम लेती हूँ।

जी हाँ, ये आकाशवाणी है और आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम है रात सुरमई और मैं हूँ आपके साथ अंजू। सुनो, आज बादलों से सिफारिश करके ये मौसम को रुकवाया है, आज बादलों से सिफारिश करके ये इस मौसम को रुकवाया है ताकि तुम्हें जी भर के देख सकूं जो खुदा ने तुम्हें मेरे पास भिजवाया है।

ए हवा, जरा रुक और मेरे साथ साथ चल। कोई रास्ता नहीं, फिर भी तू मेरे साथ साथ चल। ले चल मुझे वहां जहां यादें उसकी महकती हों। ए हवा, कुछ तो मेरे साथ, कुछ देर मेरे साथ चल।

वादा निभाने का हुनर तो सीख लेते, वादा निभाने का हुनर तो सीख लेते, क्योंकि दिल तोड़ने की कला में तो तुम माहिर निकले।

जो कभी कहते थे कि धड़कन है हम तुम्हारी, जो कभी कहते थे कि धड़कन है हम तुम्हारी, आज वही मेरे दिल के टुकड़े करके चलते बने।

दवा की चाहत में हम तुम्हारे पास आए थे, दवा की चाहत में हम तुम्हारे पास आए थे, पर क्या पता था कि सबसे गहरा दर्द तो हमें तुमसे ही मिलना था।

समझते हुए कार्यक्रम का आखिरी गीत है. अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार. 3:10 पर हमरा ही लेकर आएंगे आपके साथ मेरी दोस्त रेखा, रूपा और मुझे अनुमति दीजिए. जल्द मिलूंगी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर. अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रखिएगा. नमस्कार, शुभ रात्रि.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्व

0: का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 200,000 शिकायतें दर्ज होती थी प्रति वर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25-30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे सुबह अगरतला के मुक्तधारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत के 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। इससे पहले कल दिन में म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट प्रणाली के शुभारंभ का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणाली कोहरे के दौरान उड़ान संचालन में सुधार कर सकती है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेंग जाय और किम वॉन हो को हराया। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये महामुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। आज आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

साथियों, अगर पुराने फिल्मी गीतों की बात करें, युगल गीतों की, तो खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल सिर्फ किसी के चेहरे की तारीफ ही नहीं, बल्कि मोहब्बत की पाकीजगी, हसीन वादियों और दिल के जज्बातों को बयां करने के लिए किया जाता था। तो क्यों ना कुछ ऐसे ही गीतों को, नगमों को याद किया जाए आपके साथ, आपके अपने चैनल पर। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आप ही का पसंदीदा चैनल, आपका अपना चैनल, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हुआ है सुबह के 3:11 और 55 सेकंड। आप हैं हमराही कार्यक्रम में और आपके साथ आपकी दोस्त हूँ मैं, आप ही की हम सफर रूपा धवन। बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। और आइए आगाज करते हैं इस गीत के साथ हमराही कार्यक्रम का, जिसे हमने शामिल किया है बेमिसाल फिल्म से किशोर साहब और लता जी के स्वरों में।

साथियों, चाहे डूबता हुआ सूरज हो, उगता हुआ सूरज, आसमान में चांद और तारों की छटा, गुलाब की पंखुड़ी पर ओस की छोटी सी एक नन्ही बूंद, सभी कुछ अपने खूबसूरती की कहानी को बयां करती है। ऐसे ही एक अजनबी हैं जो बात कर रहे हैं अपनी बहारों की मलिका से। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं।

खूबसूरत, वाकई इस एक शब्द में कितनी कशिश है ना। लेकिन आज के दौर में जब हम किसी को बहुत सुंदर कह देते हैं तो वो भले ही दिल को ज्यादा छूती नहीं, लेकिन पुराने जमाने के खूबसूरत शब्द में जो हुआ करती थी कशिश, वो कशिश आज के जमाने में नहीं। खासकर तब जब ये शब्द ब्लैक एंड व्हाइट जमाने के युगल गीतों में रफी साहब, किशोरदा या लता दीदी की आवाज में हमारे कानों में घुलता था। यकीन नहीं आता तो चलिए सुन लेते हैं किशोर साहब और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत।

समय हुआ है 3:31 और 53 सेकंड सुबह के, और जनाब कार्यक्रम हमराही सुन रहे हैं आप अपने ही चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर. और आज हमराही लेकर आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन. तो बात कर रहे हैं आज हम उन गीतों की जो मोहब्बत की पाकीज़गी लिए हुए हैं, दिल के जज्बातों को बयां करने के लिए, हर शब्द को जो रूह से उतर जाता था उस गीत में इस्तेमाल किया जाता था, तारीफ के पुलों को. जी हाँ, हम उन गीतों को सुन रहे हैं आज हमराही में, जो खूबसूरती के साथ साथ अपने दिल के अनेकों जज्बातों से महसूस कराता था. सुनते हैं एक ऐसा ही नगमा जिसे हम शामिल कर रहे हैं कारवां फिल्म से. और वैसे भी दोस्तों, जब हम पुराने युगल गीतों की बात करते हैं तो आनंद बख्शी साहब या मजरूह सुल्तानपुरी, उनके लिखे बोलों को हम अक्सर याद करते हैं, जहां खूबसूरत शब्द सिर्फ एक तारीफ नहीं. ऐसा ही एक बेहद हसीन नगमा हम शामिल कर रहे हैं जिसमें हसीन वादे की बात की गई है. कारवां फिल्म का ये नगमा आप सभी के लिए.

क्या बात है, सुन रहे हैं ना आप, इसे कहते हैं शब्दों का जादू। पुराने युगल गीतों में एक और खास बात थी, प्रेमियों के बीच की वो खट्टी मीठी नोकझोंक, जहां नायक नायिका के खूबसूरती की कस्में खाता था और नायिका शर्माकर मुंह फेर लेती थी।

सचमुच रूप चाहे चेहरे का हो या दिल का, जब वो सुरों में ढलकर हमारे कानों तक पहुंचता है तो जिंदगी थोड़ी और खूबसूरत हो जाती है। आज के इस दौर में जहां सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी बदल रहा है, ठहर कर इन पुराने युगल गीतों को सुनना किसी सुकून से कम नहीं है। हमारा तो यही कहना है ना? सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा नगमा जिसमें नायक को जब दिल से प्यार हो जाता है नायिका के साथ, तो वो उसके साथ हमेशा रहना पसंद करता है, चाहे फिर उंगली में अंगूठी की जगह छल्ले की जगह लेकर ही क्यों ना रहे।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही अपनी दोस्त रूपा के साथ, आपका पसंदीदा चैनल आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमराही में आज हम बात कर रहे हैं खूबसूरत या दिल के जज्बातों को बयां करते कुछ ऐसे शब्दों से जिसका युगल गीतों में बेहतर प्रयोग किया गया। जाने से पहले बस इतना कहेंगे कि अपने आसपास की हर छोटी चीज में खूबसूरती ढूंढिए, क्योंकि जिंदगी खुद में बहुत खूबसूरत है। आइए चलते हैं एक ऐसे ही प्यारे से गीत की ओर जहां बात कर रहे हैं उनकी जुल्फों की और वो कहां जा रही हैं।

4:10 पर अरुणिमा के साथ फिर से रहूंगी आपके साथ. अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार. तब तक के लिए विदा दीजिएगा मुझे यानी रूपा धवन को. नमस्कार.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज

0: पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि कल से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। इससे पहले कल दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट प्रणाली के शुभारंभ का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणाली कोहरे के दौरान उड़ान संचालन में सुधार कर सकती है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ये तकनीक देश भर के अधिक हवाई अड्डों तक विस्तारित होगी, इससे सुरक्षा मजबूत और यात्रियों के यात्रा अनुभव में वृद्धि होगी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये महामुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. In Karnataka, the Congress Legislature Party meeting in Vidhan Sabha has elected D.K. Shivakumar as its new leader after the resignation of Siddaramaiah. His name was proposed by outgoing Chief Minister Siddaramaiah and Dr. G. Parmeshwar. After adopting the resolution, AICC General Secretary K.C. Venugopal made the official announcement. Later briefing the media persons in Bengaluru, Mr. Venugopal said, D.K. Shivakumar will visit the governor to stake claim to form the government. He also announced that the swearing-in ceremony will be held on 3rd of June. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire network of Akashvani and Doordarshan, the AIR News website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, arrived in New Delhi yesterday on a 5-day visit to India. Union

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से. बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार मेरा, यानी आपकी दोस्त रूपा धवन का. आप सुन रहे हैं आप ही का अपना चैनल आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. जैसा कि हमने वादा किया था अभी कि अरुणिमा लेकर आपके साथ फिर से रहेंगे.

तो आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ अरुणी मलिकर। समय हुआ है 4:11 सुबह के। तो दोस्तों, सुबह की ताजा हवा के साथ हैं हम आपके मनपसंद कार्यक्रम के साथ। और वैसे भी किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी में धूप कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। बहारों की महफिल हो तो ऐसी महफिल में हवा के झोंके रुका नहीं करते।

साथियों, अक्सर जब हमारे सामने मुश्किलें आती हैं तो हमारा पूरा ध्यान इस बात पर चला जाता है कि क्या क्या गलत हो रहा है, लेकिन जानते हैं सकारात्मक सोच इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी परेशानियों को अनदेखा कर दें। जी हाँ, बल्कि इसका मतलब ये है कि उन परेशानियों के बीच भी हम इस बात पर भरोसा रखें कि ये वक्त भी गुजर जाएगा और जो आने वाला पल होगा वो इससे बहुत ही बेहतर होगा। तो कुछ कुछ हमें दिल की भी तो सुननी चाहिए ना।

आप हैं अपने दोस्त रूपा के साथ हमराही के सफर पर। जी हाँ, हमराही के सफर से हम निकल चुके हैं, हम आ गए हैं अरुणिमा के पड़ाव पर। सोचिए जरा, एक आधे भरे हुए पानी के ग्लास को देखकर दो तरह के लोग बात करते हैं। एक कहता है ये आधा खाली है, इसमें निराशा है। दूसरा मुस्कुराकर कहता है अरे वाह, ये तो आधा भरा हुआ है। बस यही है आशा, यही है सकारात्मकता। ग्लास में पानी उतना ही है, बदला क्या, सिर्फ हमारा देखने का नजरिया। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो आपको बंद दरवाजों के पीछे भी कोई ना कोई राह ऊंचे नीचे रास्तों से मिल ही जाएगी।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आप हैं रूपा के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अरुणिमा के सफर पर. जी हाँ, अरुणिमा का सफर है और वक्त है 4:30:53. सुनते हैं एक और ऐसा ही कुछ नगमा जो हमें आपसे मिलकर महसूस हो रहा है.

जी हाँ, जब मुलाकात इतनी हसीन हो तो लबों पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। उस खुशी की इंतहा नहीं होती जब हमारे दिल के जो करीब होते हैं तो उनसे जब मुलाकात होती है तो सहसा ही मुस्कुराहट का आना सहज सी स्वाभाविक सी बात है। हर दिन को और हर दिन की शुरुआत को एक नई उम्मीद के साथ हमें करना चाहिए, अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान सजाकर, क्योंकि आपकी एक मुस्कान किसी उदास चेहरे पर रौनक ला सकती है। उस रौनक का आलम यह होगा कि कुछ ना कुछ तो गाने का मन भी जरूर करेगा।

परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ, अपनी सोच को पंख दीजिए, हमेशा सकारात्मक रहिए, फिर देखिए आपके देखने का नजरिया जब बदलेगा तो ये दुनिया भी एकदम से बदल जाएगी।

जी हाँ, हम मानते हैं कि परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों में हम कैसा महसूस करेंगे ये पूरी तरह से हमारे हाथ में होता है। अपनी सोच को हमें बदलना होगा। जब हम अपनी सोच को बदलेंगे तो हमारी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी, और जब हमारी सोच बदलेगी तो हमारा नजरिया खुद ब खुद बदल जाएगा। बस नजर प्यार भरी होनी चाहिए।

देखा, सिर्फ देखने के नजरिया ने ही दुनिया को बदल के रख दिया। प्यार से देखिए और दुनिया में उजाला ही उजाला हो जाएगा। फिलहाल अरुणिमा की महफिल यहीं तक। भोर सुहानी में फिर से आपके साथ रहूंगी। अब रूपा को विदा दीजिए और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि कल से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को

0: पंचायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में सैनिकों की तरह कार्य करने वाले बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों की प्रशंसा की। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के साथ आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट प्रणाली के शुभारंभ का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणाली कोहरे के दौरान उड़ान संचालन में सुधार कर सकती है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ये तकनीक देश भर के अधिक हवाई अड्डों तक विस्तारित होगी, इससे सुरक्षा मजबूत और यात्रियों के यात्रा अनुभव में वृद्धि होगी। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आओ लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने श्री ऊ मिन के साथ मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक आपसी सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की प्रशंसा की। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर अल्फियान से होगा। भारतीय जोड़ी ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई खिताब नहीं जीता है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में आज ओलावृष्टि और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website, and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO, and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, yesterday evening. In a social media post, Dr. Jaishankar appreciated Myanmar President's positive sentiment towards deepening the long-standing bilateral cooperation. He said that he is looking forward to the meeting of Mr. Hlaing with Prime Minister Narendra Modi to advance the partnership for peace, progress and prosperity. The visiting dignitary will hold discussions with Prime Minister Modi tomorrow on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. Earlier yesterday, President of Myanmar visited Gaya in Bihar and prayed at Mahabodhi Temple. President Hlaing is on a 5-day visit to India. The government has temporarily exempted customs duties on cotton imports from the 1st of next month to 31st October this year. The Ministry of Textiles in a notification said that the decision has been taken keeping the interests of the cotton farmers and the entire cotton value chain at the forefront. It added that the measure implemented during the cotton off season will ensure adequate availability of cotton for the textile industry, support MSMEs, moderate input costs, and strengthen the competitiveness.

उठिए किस पूरब की खिड़की से उस रब ने नूर बहाया है। जरा आंखें तो खोलिए जनाब, एक और खूबसूरत सवेरा आया है। नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात और एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ आप सभी को नमस्कार। आपकी दोस्त और हम सफर आपके साथ है रूपा धवन, भोर सुहाने लेकर। आप सुन रहे हैं आज का सबसे शांत और रूहानी शो। हर रोज की तरह इसी वक्त आपके साथ होता है भोर सुहानी। 5:11 पर आप हैं अपनी दोस्त रूपा के साथ। तो चलिए सोच विचार कैसा, आज के दिन की शुरुआत भी प्रभु के नाम से करें और उन्हीं के साथ, उन्हीं के हाथ पर छोड़ दें हम आज का दिन भी।

दोस्तों, सुबह का ये जो वक्त होता है ना, जब आसमान का रंग गहरे नीले से धीरे धीरे संतरी होने लगता है, बस ये वक्त मानो आंखों में बसाने का दिल चाहता है इस समय को। ये वक्त कुदरत की सबसे हसीन पेंटिंग जैसा होता है। ठंडी हवा के झोंके जब चेहरे को छूते हैं तो ऐसा लगता है मानो जिंदगी खुद आकर हमारे कान में कह रही हो, चलो उठो, एक नई शुरुआत करते हैं। और वाकई इस वक्त से तो जो भी अगर देखेगा इसे तो दिल से लगाव हो जाएगा, दिल से इसका प्रेमी हो जाएगा।